48 के देश मार्च के तिथि 15 तदनुसार 5 जून 2026 सुबह से 5:58 हुए हैं। आरंभ होते हैं कि प्रातःकालीन सभा

प्रवेश के लिए और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा

actually can be symptoms. आप क्या सिम्टम है जिंदगी का सबसे बेहतरीन उसूल है हमेशा मुस्कुराती रहिए क्योंकि आपकी मुस्कान कई परेशानियों की

राष्ट्रीय के राह देश की चिड़ी में भर गई। बच्चों 30 मिनट का समय हुआ है, लीजिए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हमारे

से 30 मिनट तक। आप बचकर 15 मिनट पर और पुनः दोपहर 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबदिस। इसका भाग 31 आज प्रसारित होगा।

सुनने का कार्यक्रम सत्य लोग 9:30 पर आपके संचार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात 9:30।

फिर आपसे मिलेंगे कार्यक्रम रंग बिरंग 12:05 पर सजाई जाएगी यादों की महफिल। सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे। 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। 3 बजे सुनिएगा हेलो सहेली। 11:00 घर की शाम 4 बजे आपको सुनवाई जाएगी गीतों भरी कहानी। कहानी नजरिया वाचन स्वर नेहा शर्मा का है। 5 बजे सुनिएगा छाया जी। 5:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम तराने नई पुरानी।

Grandma, can you do that? No, the teeth. राजू क्या करते हैं सुनने का खाया कि आने के बाद स्वर राजू अशोक का है वैसे जारी रहा कि कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और रात 11 बजे रंगारंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण तो श्रोताओं ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आप सुन रहे थे झरोखा में लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 210

प्रवासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए थे। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कौतेय की करने का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाचयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहाँ केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: दौर की बात हो रही है तो 3 साल की हमने पिछले कड़ियों में बात की। 3 साल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से साल है जिनका उपयोग किया गया है?
1: जी,
0: 3 साल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो साल हम लोग संगत के लिए लेते हैं
1: जी,
0: उसमें भी एक है कि 3 साल की जैसे खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये 7 मात्रा का ताल है, धीना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं और ज़्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो जो है 7 मात्रा का चक्र जो है
1: जी,
0: वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभाना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के भी,
1: और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है।
0: हाँ, खाली से होती है, ती पर खाली है, ती ना। तो वो खाली से शुरू होने वाला ये,
1: और ये निराला ताल ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है
0: बिल्कुल,
1: और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में तो बड़े संत को
0: बहुत ही अच्छी
1: लय होते हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं?
0: आपकी नजरों ने समझा,
1: अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है

0: रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है। जैसे रूपक की 7 मात्रा है तो उसकी दुगनी 14 मात्रा, 14 मात्रा का गीत चंडी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो थी ना धी, ये रूपक है। और गीत चंडी जो है वो तो ये जो है ये रूपक के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है। तो दीपचंदी की भी कई सारी रचनाएं हुई है और इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा लें या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा लें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपना अपना उनका एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है। इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है।
1: मिसाल के तौर पर कौन सा गाना
0: दीपचंदी में अजीर उठ कर अब कहा जाए,
1: आलोचन की बात आप कर रहे हैं।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देश पर आधारित है और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को

0: उसमें और मोहम्मद अजीब के आवाजों में ये थी झलक कश्मीर की कली से निकली गीत की जो तालदीप चंदी निबद्ध है और राजपाही पर आधारित है संगीतकार ओपीलियर रविंद्र जी रूपक सात माता का ताल है और दीप चंदी चौदह माता का फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग किसी गीत में कभी हुआ है
1: बिल्कुल हुआ है और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है वो पिया तो से नैना लागे बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है एस जी वर्मा साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं ये इसमें जो है ना वो है तालवाद्य कचेरी तालवाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तालवाद्य हैं और उन तालवाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस तो तालवाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं लेकिन उसको ये तीन गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है और जो एस डी वर्मन साहब ने किया है तो किया तो उसके नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो तालवाद्य कचेरी अंत में बसती है लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मजा इसमें है इस गाने में मतलब जो उसका वजन एक बार रूपक का है एक बार दीपचंदी का है दोनों बहुत ही अच्छा लगता है और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फिलर के तौर पर मतलब इंटरलूड अच्छा जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से भागने दिन में धनना तो ये जो छोटा सा पीस है जिसको हम इंटरलूड कहते हैं तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट से बजाते हैं ये इस गाने में वो तबले पे बजा है इंटरलूड और वो बहुत ही खूबसूरत है।

0: इंफेक्शन ऐसी किसी जैसे पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट हेल्प एसिस्टेंस फ्रॉम अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम होगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रथम डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मिश्रा.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूलने की सही

का गीत सुना। अब आपको सुना रहे हैं तुलसीदास फिल्म से आशा भोसले और साथियों के स्वरों में जी एस नेपाली का लिखा गीत, धुन बनाई है किसी गुप्त ने।

चाहे थे और साथी के स्वरों में ये गीत और आइए सुनते हैं ये संदेश और संदेश

स्वागत है। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत, फिल्म का नाम है नाचते। प्रदीप ने इस गीत को लिखा है, श्री रामचंद्र ने संगीत से सजाया है।

मोहसिन मेला से निधि शमशाद बेगम और मुकेश के ये गर्ल्स हैं। सचिन बदायूनी

0: ये पानी तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा।
1: धीरे धीरे घाटी से गूंजते हैं

आप सुन रहे हैं धीरे से ही अब आपको सुनवाती है फिल्म चर्च से। ये गीत जिसको लिखा है अशोक बिहारी

स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूँ पूजा नरानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से। आशा भोसले और अनवर की आवाजें, निभा के बोल धीम बनाई।

0: ये बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एक्सेलेंस टू अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारी कम होगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: इसलिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून 4:00 बजे

बाद आप सभी का कार्यक्रम हम राजी प्यार सुने स्वागत है। आपको सुनवा रहे थे हमारा संसार फिल्म का गीत महेंद्र कपूर और यंगता की आवाजों में। गीतकार और संगीतकार रवि जैन है।

स्तरों का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। धुन बनाई है लक्ष्मी कांत प्यारी लाल ने, गीत को लिखा है आनंद बस्ती ने और आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: really different direction from Genesis 2 second half. You see, by the same time, the European professors of the Antiras did when we got to the प्रिसोवेन का आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह चक्रव का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया। कहा, अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और सस्टेनेबिलिटी तक पहुँच में सुधार होगा। सेंट्रल लाइन के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं के लिए एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, कृषि PIR और टेलीकॉम PIR से मिले उन्नत ऑप्टिक निष्ठान प्रणाली और वैशाख में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खोज, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगा संघ चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा

here, Swagger Tech. Before then, I just need to remind you that the community is Mr. Adriga, then the Governor Sanjay Malhotra, at about 10 o'clock, Mumbai may moderate community to host the Haringi. The Sadasya Samiti ne budhwar ko 3 divasiy vichar vimarsh se shuru kiya tha. हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया।

होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक है। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के S-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री श्री खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस

गुजराती से उन्नीस सौ नब्बे तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने

कृष्णा की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता

इन दो नदियों के संगम पर बसे बालिका शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और विपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी ग्रामीण नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बालिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कभी भी थे बालिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत

गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात

सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कृष्ण कुमार मित्र भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाम से बारिशा लाए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।

0: चोरी हो गई। मगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी कानून की जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
1: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
0: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,

0: बारीकाई पहुंच चुकी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
1: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर ये पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से पहुंच स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग

खुंडर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिशाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से खुंडर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। इसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्तर में गा रहे

0: मुखर्जी, चित्तरंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहू लुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठी चार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियाँ खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,

0: grupos que Nati, Nicky, este tipo de cariño. Muy baratita en Rita, miren de Fernández. Hindi Anuvad, Sampadan, or Shisha Geet Rasana, Jain to Patri Gar. Shisha Geet K. Sangeetkar, Amit Roy. Vatan Sir, Jain to Patri Gar, or Mandakini Joshi. Shavadi Kalakar, Yunus Khan. Sangeetkar, Ajay Parad. Technical Sahyog, Samriti Naik, or Anushree Gupta. Prasthuti Sahyog, Akash Vani Pune. Prasthuti Gupta, Anushree Pathak. ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया। आईएसटीमी बीच गान
1: आकाशवाणी जनपद का ये विविध भारती प्रसारण कार्यक्रम है। सुधार थोड़ी देर में सुनेंगे।

0: एक जाहिद हुसैन उर्फ विक्की मुसल का रहने वाला है और उर्फ मोहम्मद रेहान हुसैन है मुसल क्षेत्र का।
1: अब झारखंड में झारखंड में सर्दियों के बीच संपर्क क्षेत्र के इलाके मानसून के प्रवेश की संभावना।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम सिप्रलोक में स्वागत है। अब आपको सुनाने जा रहे हैं मिशन मजबूत सिंह का ये गीत, शब्बीर अहमद के लिखे बोल, तनिष्क बाग़ची का संगीत, जुबिन नौटियाल। या

अवसर हुई थी। इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं या फिर जो नहीं जा पाते हैं वो घर पर ही गंगा जल रखते हैं और उसी को पानी में मिलाकर और उसी से स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन जो स्नान होता है उसे अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस अवसर पर 10 विध स्नान का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसमें शरीर से किए गए 3 प्रकार के पाप, वाणी से जुड़े 4 प्रकार के पाप और मन से किए गए 3 प्रकार के पाप शामिल माने जाते हैं। इस तरह गंगा दशहरा का स्नान आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है।

छात्र के चेहरे गंगा माँ पर आधारित ये सॉन्ग हमने आपको सुनवाया है और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत बेवफा फिल्म से। उदित नारायण की आवाज, समीर के बोल, नवीन सेवन का संगीत।

अनियंत्रित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA यह दिवस PSMA के लिए वर्षगांठ का प्रतीक है जो अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ना अवैध मछली पकड़ने और इसके समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है।

ये पढ़ाओ की आवाज में ओ जल हम से चिंता लीजिए और अब आपको सुनाने जा रही है संगीत का लिखा गीत कीर्ति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में

इसे रोकने आपसे पिता फिर से स्वागत है। सुनो आज 4 बजे शाम को पिता के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भटर्गी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्व फिल्म का ये गीत अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में।

0: ग्यारह बजे से 12 बजे के बीच मनुष्यहरी कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो चमेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: अब आपको सुनाने जा रहे हैं आप मुझे।

अतिथि दिए गए आभार होंगे। और अब आपको कार्यक्रम के लोग का आखिरी गीत सुनाने जा रहे हैं। आई हेट लव स्टोरी फिल्म से श्रेया घोषाल, सोना मोहपात्रा की आवाज़, कुमार का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आपके संचार केंद्र रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर।

0: आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के

से जाने हैं। कोई खासी की सही प्रेम का जो उसकी युवा उम्र की आसमानिक और भावनात्मक संघर्षों का पहला हिस्सा बनती है। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आकर नहीं जा सकता। सोनमोल इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस न कोई स्टारडम का मामला। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि फिल्म केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील और ज्ञानी कलाकार भी है जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती है। हीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि

थी। राजा वहां को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। उन्होंने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने राजा की निरता, मानवीय संवेदना और बलिदान को इस सभी पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो नहीं बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से नहीं सकती है। अमिता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सुशील मानसिंह सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक उत्पाद के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

rejecting modern rules or strict government behaviors, अपने अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इसके लिए उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का

कार्यों को गंभीरता से लेती है और यहाँ के पांच धर्म से जुड़े कैमो है क्या ये बीपी क्यू प्लस समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती है। उन्होंने प्रेगनेंट और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सीमा ने ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर

और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोलन को पैसा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जिसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सबकी सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म मिर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सांवरिया और फिल्म रतंधन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्मफेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहाँ तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड जीतती रही।

प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्म सफर की दास्तान एक स्टाइलिश स्मार्ट स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखेगी।

को बढ़ाने के लिए निजी आकाशवाणी का सहयोग।

ممكن تكون

I think that's the money piece.

बल्कि उस सच्चाई में भी है जिसके साथ वे हर शोर को निभाते हैं। उनकी कदले सुनते हुए अक्सर लगता है जैसे कोई अपना व्यक्ति

समय की मांग है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, एक पानी बचाए, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें।

की जो तस्वीर थी सूरत में, जब वो उठाया तो दिन के बाद में चमक का मौसम है और राज्य की जादू बीते लम्हों की हम देखते हम सुनी करना महत्व लगी है। रविवार को और शनिवार को आपकी सोई हुई आपकी जागी हुई आपकी मर्जी

ज्यादा भी आपको नहीं बताना लेते रहो तो मैंने बंद किया बात नहीं जावेद अफरीदी को दोस्तों एक ऐसे विषय की जो हम सभी जीवन से जुड़ा है जी हाँ आज है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत

हम सीख लेते हैं। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सुंदर भविष्य दे पाएंगे। सभी श्रोता साथियों को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

आकाशवाणी जमशेद पर विविध भारती केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। दोस्तों गर्मी बदलते मौसम और बिहार बता जनजीवन ये सब अचानक से नहीं हो रहा, ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का नतीजा प्रकृति के संतुलन को खराब करने की कोशिश ने आज को एक खतरनाक है। प्रकृति नाराज हो चुकी है। कल्पना कीजिए कि जिस तरह की गर्मी अभी नजर आ रही है या फिर हम एहसास कर रहे हैं, आने वाले समय में वो और कितनी भयावह हो सकती है। जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है? समय अभी भी है, यदि हमने इसे समझ नहीं लिया तो आने वाले समय में स्थिति

किसी ने भी खत्म कर दिया। रेडियो सिग्नल पर गाड़ी का इंजन छिपाव बंद कर दें, धूल पर हटाने के पूर्व छिड़काव करें, वाहन का समय समय पर ट्यूनिंग कराएं ताकि इंजन का अधिकतम उपयोग हो। शादी विवाह जुलूस त्योहारों एवं अन्य किसी के मौकों पर पटाखे का कम से कम उपयोग करें।

करियर तलाशने वालों के लिए हमेशा से ही एनवायरमेंटल स्टडीज एक खास विषय रहा है। अब जबकि हमारे छात्र छात्राएं प्लस टू हो चुका है उनका, तो एक नए विषय की तलाश में है, वो किस विषय में पढ़ना चाहते हैं, किस विषय में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एनवायरमेंटल स्टडीज एक सही विकल्प है। ये बात अलग है कि पहले इस क्षेत्र में करियर विकल्प सीमित थे, मगर आज के दौर में जहाँ रोजगार सृजन एक बड़ी चिंता का विषय है, वहीं हर क्षेत्र में युवाओं की पहली पसंद बनने की दिशा में है एनवायरमेंटल स्टडीज। प्रकृति के साथ संतुलन साधने के लिए आजकल हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में पर्यावरण से जुड़े प्रोफेशनल इंजीनियर्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बीते दिनों केंद्र सरकार की ओर से E20 ईंधन की एक नई पहल शुरू की गई।

सिटी नई दिल्ली, www.jnu.ac.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही स्कूल ऑफ एडवांस स्टडी नई दिल्ली में भी आप इससे संबंधित विषय को सर्च कर सकते हैं। 4 से 5 वर्षों के दौरान ग्रीन जॉब की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश के रिन्यूएबल एनर्जी ईवी तथा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति में संभव की संभावना बढ़ रही है। 20% जॉब की दर से ग्रीन जॉब प्रोफेशनल की मांग बढ़ रही है दोस्तों, और ऐसे में युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। एनवायरमेंटल साइंस और मैनेजमेंट जैसे कोर्स करने के बाद आप इंडस्ट्री, सरकारी प्रतिष्ठानों और राज्य स्तरीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। रेस्टोरेंट, होटल, मॉल्स व हाउसिंग सोसाइटीज जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पर्यावरण के मानकों को मेंटेन रखने के लिए भी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट की सेवाएं दी जाने लगी हैं। आप चाहे तो इस क्षेत्र में कंसल्टेंसी सेवाएं भी दे सकते हैं। एनवायरमेंटल विषय की पढ़ाई के बाद आप एनवायरमेंटल इंजीनियर, एनवायरमेंटल मैनेजर, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट या सस्टेनेबिलिटी मैनेजर के रूप में इस फील्ड में अपना जो है करियर शुरू कर सकते हैं। क्षेत्र में आने के लिए आप इससे संबंधित समुचित कोर्स कर सकते हैं। अगर एनवायरमेंटल विषय की पढ़ाई के लिए डिग्री, पीजी, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जा रहे हैं जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट, ये 2 वर्षीय कोर्स है जिसे बीएससी और बीटेक होने के लिए वह कर सकती है। इसी तरह एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और रिसर्च मैनेजमेंट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल साइंस जैसे कोर्स के भी

0: तो मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
1: और हर की बात आकाशवाणी, हर दिल की बात आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हमारे लिए बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन से लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारी वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर।

में कोई फोर्टी सीरीज स्टार नहीं था। उसकी कहानी मसाई संस्कृति मध्य पर खेलती थी और मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म न केवल उत्तर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी बल्कि

रोमांस को काल्पनिक दुनिया में दिखाने के बजाय फिल्म ने इसको कड़वी सच्चाइयों के बीच स्थापित किया। परिवार थे और उन्होंने इस विश्वास के साथ उन्हें अलग कर दिया कि लगाव को खत्म कर देगी। इसके विपरीत जूरी ने प्यार को और गहरा कर दिया और कहानी को एक दुखद अंत की ओर धकेल दिया।

कर्मचारियों के साथ इस फिल्म में खुद को देश और व्यक्ति स्टार के रूप में स्थापित किया। उनके साथ फिल्म थी विद्रोह और भावनाओं को बालचंदर के निर्देशन में उन्होंने बेहद खूबसूरती

समझे के लिए फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे। गीत के बोल से चौमन बच्ची ने संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और

आपकी दिनचर्या जो है अस्त व्यस्त हो सकती है। गर्मी के मौसम में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमें। इन दिनों बाहर निकलते समय आंखों और त्वचा को धूप से बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें शुष्क हवा धूल और आर्द्रता के चलते परेशानी होने की अधिक आशंका रहती है। जिसके बचाव के लिए गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाव में मौसमी फल भी फल पेन की तरह अंदरूनी अंगों को सुरक्षित रखते हैं। इसका प्रभाव हमारी सेहत के साथ त्वचा

मौसमी फलों जैसे तरबूज, आम, जामुन आदि का प्रयोग भी धूप से बचाव करने में कारगर होता है, जिन्हें जा सकता है। गर्मी में आंखों में सूखापन की समस्या अधिक होती है, यही किरणों और प्रदूषण के कारण आंखों में संक्रमण का भी खतरा रहता है। बाहर निकलते समय गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए, ये आकार में बड़ा हो ताकि आंखों को पूरी तरह तैराकी के लिए जा रहे हैं तो बच्चे को इसे अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आंखों को सीट की धूप से बचाने के लिए चौड़े किनारे वाली टोपियां हेट लगाएं। यदि आंखों में खुजली हो या कोई समस्या हो तो उन्हें हाथों से मलने की बजाय साफ कपड़े से साफ करें। कोई भी दवा या आई ड्रॉप चिकित्सक के परामर्श के बाद हवा के संपर्क से भी आंखों को बचाकर रखें। धूप में अधिक देर रहने या

के साथ देते हैं चाहता है इन में देशा हरित ग्राम योजना के तहत मेहनत करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिले में आमों की उनको केमिकल जिला समाहरणालय परिसर में आम महोत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन किया गया है। ये महोत्सव किसानों और स्वयं सहायता समूह और बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सीधा लाभ पहुंचाना है।

सोच को हो चुका है जिससे हम सारे दिनों में सतर्क और बढ़ने की आशी करते हैं। 5 से 18 दिन में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। 5 से 11 दिन तक अधिकतम तापमान 24 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस ठीक रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम संबंधित जानकारी और प्रोफाइल

यहाँ पर प्राणीजन क्षेत्र का विविध भारती केंद्र है। अपने पेज शर्मा आठ नंबर आठ पर आइए श्रोताओं जुड़ते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं अगला कार्यक्रम नाटक की।

去啊，反正怎么样。

0: साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे उस छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है,

थोड़ी ही देर

संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज की कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मतलब ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए, तो बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है। तो यही तो बात है, पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ते हैं कविता के शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीर और देवदार की छांव में पली, बुराई के फूलों की बहकती, सूरज झरने की चंचल, पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी, धरती फुलासी, पगडंडियों पर उसके पाँव पड़ते, धरती से आंचल

सूरज जी। हवा उसके जुल्फों को टहला कर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसे सुनते पवन के संग झिड़क उठते रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी, नदियों से नहीं उनके सफर से और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से। उसके दिल में अजब सा संसार था, एक पूरा जमीता था उसके दिल में, नदियों का संगीत, पहाड़ों की छुट्टी, वो थी पहाड़ों वाली लड़की, झरनों के कलकल थी जिसकी आंखों में बादलों की बनी थी। अब भाई बहुत सारे शब्द बन गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पे रही जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाए कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है।

कर का नाम हमने पूछा था, कुछ शिकायत किया है मजनू सिकंदरी और संगीतकार ओपी नगर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और ज्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई है, पहली बार आई है और कहाँ गायब थे। नहीं, गायब कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगु होती थी। अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब थे।

बीच न कोई आया गया जहाँ चलो हम दोनों चले वहाँ जहाँ दिन भर महुआ पर झूले रात को छू पड़ते हैं फूल जहाँ दिन भर महुआ पर झूल रात को छू पड़ते हैं फूल बात के झिरमुट में चुपचाप जहाँ सोए नदियों के फूल भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहाँ चलो हम दोनों चले वहाँ विहग मृग का हो जहाँ विवास जहाँ अपने घर की आकाश कविता आगे भी उन्होंने लिखी काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की क्योंकि टिप्पणी आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षिप्त में लिखे ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना नदी चंचल अंबर चांद जवाहर हमको तरसाए बारिश देह पर पड़ते चिपचिप बरसा पाले वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़े। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न रीति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है लेकिन कहीं वो लड़की है ख्वाबों कमर वाली लड़की उसके पास जो शब्द है उन शब्दों के गाने लिए गए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी 13 की।

ऐसी स्थिति के लिए कुछ काम संभव नहीं है।

भी इस बार भी एक पोर्टल बनाने का संकल्प किया है, तो सारे लोगों से आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मोटिवेट करें कि जो हजारीबाग सारा बरस करने का प्रयास किया जा रहा है, सारे लोग एकजुट होंगे तभी इस मुहिम को पूरा किया जा सकता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम संभव नहीं है,

ना

सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र FM 88 MHz पर अब देख रहे हैं विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती के सुरीले सफर में कहा एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती झरनों में नहाती फूलों की घाटी में समा जाती है। उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे उसके जज्बात को समझे। वो अपना लोग तमाम परदेशियों की तरह छोड़कर चलाना जाए इस बात से भी परदेशी की तरह छोड़कर चलाना जाए फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी सब कुछ है प्रकृति भी है प्यार है दर्द का राग है। कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम मानसून की आमद होने वाली है केरल से आना शुरू हो गया है आज बादल छाए हुए हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है

से वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इस पे शामिल हैं या नहीं। और हाँ, शब्द भी बता दीजिए कि इस शब्द से कौन सा शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छाँव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है। इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का। बिल्कुल ठीक फरमाया। और इस बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे गांव में, अभी भी हैं। और उन बागों में इस तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़ और वो कैसा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं।

जाते थे हम पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या मिसल हमारी जो कहती थी टूट के आम चढ़ता था। तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ जो आम यही भी आपको याद करें जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए याद करते रहिए और गानों से जो हम सवाल पूछते हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिर दो दूनी चार बताइए किसकी है आवाज़, किसका है संगीत और किसका है गीत।

सुन रहे थे हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुना है ये भी जरा बताते चलिए। एक किशोर ने लिखा है कि इस गीत के गुलजार है और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती है। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखती भाई, इसके अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी है। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा।

जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीजें ले ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलिथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना

फिल्म का गाना आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज है, हर्षद बिहारी के बोल रवि का संदेश। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की भीगी भागी थी वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनो उड़ते फिरू ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंदेरा गाँव, हुस्न पहाड़ों का और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का लेकिन सुकून शांति शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी में लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार है। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। पेनिल झरना है

को लगाने कौन से, जरा वो भी तो बताइए। एक स्रोता ने लिखा है कि धरती के पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो है, इन्हें बचाने की बजाय इनका

0: के पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े अच्छे हैं। गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नीम के पेड़ बदलते होंगे। अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर चढ़ी जाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें
1: प्यार का राज सुनो, प्यार का राज सुनो।
0: गीतकार का नाम भी बताइए, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

की आवाज में हर्षजयपुरी के बोल के सचिन देवर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहाँ नीले अंबर संग अच्छे लय करती पर्वतों की सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता से लगे हुए कई टहनिया लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहाँ हमने कटर दिए और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो प्रकृति से सुंदर कुछ नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर प्रकृति के करीब अवश्य जाए। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बचाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़े क्या पौधों की संख्या बढ़ा दें। उनका ये गाना किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

आवाज हटर के तरीके बोल रामलाल का संगीत था। हमें संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी में लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य साध्य प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हम इसको महसूस करते हैं। अब आगे बढ़े और सुने आम फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। ये क्या संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

सबकी आवाज शैलेंद्र के बोल शंकर जी की सबसे भलती और जी हमने आपके सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर कपूर और नरगिस श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ रहे हैं आपकी इबारत से वो है झूमे रे नीलांबर झूमे रे धरती और बारिश की बूंदे बरसने लगी ये गाना और नील गजल की छाओं में तंसीबन उड़ जाता है और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी सौ कैसे करे फिल्म का नाम और जाती हुई ने बन बन भाई ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्ले लिस्ट में हैं लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है हमें गांव नदियां नाले सब कुछ स्वच्छ रखना चाहिए पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सकेले नदियां पहाड़ इन सब का जिक्र चेहरा है अब देखना चलना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश

फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे। साधना और जॉय मुखर्जी सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी राजा मेहदी अली खां के बोल से और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता

इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और विपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। उन्होंने विशेष रूप से एक कविता

मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंगभंग दूसरे आंदोलन के लिए रविन्द्र नाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

0: का अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलन ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विष्णु कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिशाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
2: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।

0: ठाकुर, कवि कालीप्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारीसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
1: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर ये पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए, परंतु ये सब तूफान सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
0: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए।

2028. मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार खुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थे भीड़ पर हमला

सागर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिशाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुलर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मांगो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे हैं।

0: घोष सुरेंद्रनाथ भूपेंद्रनाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहूलुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठीचार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकें, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी।

शृंखलाची मीची एकतीसवी कडी मूळ मराठी संगीता मिलिंद सबनीस हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्ष गीत रचना जयंत पात्रीकर शीर्ष गीत के संगीतकार अमित रॉय वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी सहभागी कलाकार यूनुस खान संगीतकार अजय पराड़ तकनीकी सहयोग समृति नायक और अनुश्री गुप्ता शिक्षक सहयोग आकाशवाणी पुणे प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

यहाँ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल

0: कंपनी के प्रधानमंत्री आज सिंधु प्रदेश लक्ष्य द्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और पद्मा द्वीपों पर बहुउद्देश्य खेतियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रू जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और बेहद से आय को पूरी तरह से छूट दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से

करोड़ को यह सारा रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% बनाए

5 दिसंबर 5 प्रतिशत

आपूर्ति प्रदान करेगा। एसोसिएशन के महासचिव सौरभ सांगला ने कहा कि एनआरआई आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा स्थिति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट करें कि मोदी ने कहा कि एयरटेल ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों

पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए।

0: का नाम से टिकट लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड कंटिनेंटल डे सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड मां का नाम से टिकट लगाएंगे।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने

क्योंकि आंतरिक समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में

की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी के साथ दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अत्याचार

सी डी धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज से है।

0: Usamos que este aquí abajo, me dice el fin y un dame ya que me pide dicho en el bro. अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इंफेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस योर डॉक्टर ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों पर
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंटीरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खा के तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको

0: सुन रहे थे मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल से कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देखूं कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय चिराग रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बेचारा

कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा केंद्र। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है।

चाइना भी कर रहे हैं या आवश्यकताएं हैं ऑनलाइन या टीवी ये सब वीडियो हो रही है, ये रूटीन मैटर है। कोई भी कोई हम लोग की नवा वीडियो कर रहे हैं, गरबा है, पलामू है, नंदा है, लाते हैं, एक एक जिला का समय लगे, काम अच्छी हो रहे हैं, कि लोग नए हैं, लावेज है, लावन है, जो भी उनका जो प्रॉब्लम है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल

0: good things for him.
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया है तब से उन्होंने लगातार एक संरचनात्मक कार्य की तरफ से अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक पेड़ माह के नाम से अभियान की उन्होंने शुरुआत की। आज से लेकर के 21 तारीख तक हम 2 लाख से ज्यादा पेड़ इसे झारखंड प्रदेश में लगाने वाले हैं।
0: न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण और न्यायिक पदाधिकारियों ने पौधे लगाए।

प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी की।

0: सखियों और श्रोताओं को आज ही श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वही छोटी सी मुलाकात अक्सर सा उम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अलग सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहाँ से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, गुरुद्वार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या कर रही हैं?
1: मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय ऐसा चल रहा है?
1: तो हाँ जी,
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, खुद का काम कर रही हैं। और आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तो

0: उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आपसे
1: जी। अच्छा तो आप बताइए अब आप क्या कर रहे हैं?
0: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
1: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
0: मैम
1: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
0: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
1: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
0: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
1: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहते हैं।
0: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से संत प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हूँ। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्र कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ पढ़ाई तो खत्म है मेरे को, से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई।
0: अच्छा तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी सर।
0: अच्छा
1: जी पास
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है पवन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो उनकी याद में गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद दे दीजिए।
0: बिल्कुल मैम, पवन कल्याणपुर जी का ही

0: सकते हैं हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडी।
0: ललिता जी, इंदौर से बोल रही हूँ, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं अभी हाउस वाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं अब गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मी से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में कम निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा,
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना है।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं बड़े? बच्चे छोटे हैं
1: अच्छे बड़े हो गए
0: थे बड़े हैं। चलो सब सही, परेशान नहीं करती हूँ आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों की पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि आपने जो बच्चे उनको जो गर्मियों के दिनों में बड़े बड़े नींबू की शरबत और बड़े बड़े चीजें बना बना के देते हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। ये छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ।

0: सही है।
1: हाँ बताइए कौन बोल रही है और कौन से?
0: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
1: अच्छा रेखा जी बोल रही है उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी आप क्या करती हैं?
0: मैं मैम हाउस वाइफ हूँ।
1: अच्छा तो आपके परिवार में कौन कौन है?
0: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की, मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
1: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी है ना?
0: जी जी अभी 2-3 महीने हुए।
1: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है? कड़क वाली की अच्छी वाली?
0: नहीं,
1: आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज मुझे लग रहा है। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
0: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
1: चलिए इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
0: हाँ
1: बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक
0: जी जी मैम अच्छा लगता है उनके साथ। और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर से बहू आ गई तो टेंशन फ्री है थोड़ा सा।
1: बिल्कुल, यानी कि आपकी भी साथ है और आप भी किसी की साथ हैं।
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तो कितनी प्यारी है, तो कितनी भोली है।
1: क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका।

0: कहते हैं ना।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हूँ। तो बताइए आप हाउस वाइफ हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप तो जो चार दीवार हैं उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: तो संभाल लेंगे ना घर में तो सब। मैंने कहा बाहर ही जाएंगे तो घर कोई कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना चार दीवार को घर बनाती है। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे दो बेटे हैं, बहू है मेरी, एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप काफी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी
1: हैं। हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी तो बताइए आप अपना जो समय रहता है वो खाली समय रहता है जो उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करते हैं?
1: तो सबसे पहले तो मेरा तो शौक है म्यूजिक सुनना। सुबह से मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिसी संगीत सविता, भूले बिसी गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है। सुन किचन में चलता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। संगीत में अगर रुचि हो ना आपकी तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज
1: और
0: है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 20-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ। मेरे घर में तुलसी इतनी है, मेरे से बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए

0: बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाग में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ में मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आस पास हरियाली बना के रखो, जो हमारी हमारी जीवन देते भगवान।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपकी बात करके।
0: गाना सुन रहे जागो साइड का नाच।

0: कॉन्फिडेंस
1: मैं पूर्णिमा का बोल रही हूँ, पूर्णिमा सेलगम। अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ, अच्छे अच्छे गाने सुनती रहती हूँ।
0: हाँ बताइए, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितने से तक बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओह, ठीक है ठीक है। तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे?
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती।
0: मैंने अच्छी बच्ची है। तो बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप बच्चों का टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप में डांस करती हैं या कि अपने मतलब आपको रखा है समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ है यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे
1: हाँ,
0: ये जो नृत्य जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती है। कोई परेशानी हमें एकदम आस पास ही नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना। बड़ी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो आप
1: सही कर दे, डांस और म्यूजिक तो ऐसी चीज है
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत
0: जी। तो आप बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं।

0: शहर
1: हम दुकान बोल रहे हैं
0: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ। रत्ना सिन्हा।
1: अच्छा रत्ना जी बोल रही हूँ, कहाँ से?
0: बाराबंकी से।
1: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप तो क्या करती हैं?
0: जी मैं आशिका हाउस वाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
1: जी। और वैसे तो हाउस वाइफ क्यों है यार, सभी घर से कई हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है।
0: बिल्कुल बिना रुके बिना थके।
1: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
0: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए।
1: बिल्कुल।
0: जो है
1: आपके परिवार में कौन कौन है?
0: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है।
1: बहुत बढ़िया। तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपको समय निकल जाता होगा अच्छे से।
0: जी जी जी जी।
1: तो बताइए क्या जी, तो आप बताइए भाई, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
0: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: और लगा रखे हैं? जी हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। चिड़ियों की जिम्मे सोचिए, वो चिड़िया अच्छी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है। वही तो हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में अपनी चहचहाट देती है, अपनी खुशियाँ देती है ना। वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियाँ दिखाई जाती है। आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
1: बहुत अच्छा गीत है ये, और

0: लिए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निकोते है, मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम, घर में रहती हूँ और कृषिहीन हूँ।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है? जो आपको
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे जादूगर फिल्म में का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।

0: कौन बोल रही है और कौन सी शहर से बोल रही है?
1: मैं उड़ीसा गंजाम जिला से बोल रही हूँ
0: जी। आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियाँ हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे वो सबकी सेवा कर सके, है ना? तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है?
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर के काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम दोस्त तैयारी करके काम है ये सब कर लें फिर समय काम मिलता है, लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीज़ें सीख लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज 25 साल तक मेरी खूब लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है। तो कुछ ऐसी बर्थडे की गीत सुनाई गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, माइका से भी इनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या किया सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर लेती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीज़ें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के खुले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: वो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन सा?
1: हजारों साल की बात है।

आलोचनाएं कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बात को तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों को कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपने सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोए और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली के प्रस्तुत करता है अनुप्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एक्सेलेंस योर डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों कम हो जाए।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाते तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए की बातें आज जो शाम 4 बजे

शाम के 4 बजने को है। अब आइए सुनते हैं समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के राष्ट्रीय केंद्र से।

मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से। आज आप जुड़ते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं कार्यक्रम।

नहीं कहा, वो तो मुझे केवल संभावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती है। पर मेरी कमियाँ ही बताती रहती है और दीदी से हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भाला ऐसा क्यों सोचती हो, नजरिया बदलो अपना,

मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो जब तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास होता है।

ये कर दिया था। सबसे अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, तो फिर इन्हें बनाना

भी नहीं बुलाया था और शांति चाय पीकर ही रह गई।

जिससे तू जितना ही नाराज हो पर मैंने जिसे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जल्दी तो नहीं हो रही है? संजीव ने चुटकी ली। मेरी जीवन संजीवनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो,

मदाती कामों में लगी हुई थी। भावना को उनके कान की छिप गई थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकल जाती और मम्मी की हाँ हूँ का छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी की फोन की घंटी। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा। मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी। इतना काम कर दिया, बाकी उन्हें तो करना ही करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं, जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर उन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने सोच कर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करके बैठी। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो हाथ से ना गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह

पर फोन करती। ठीक है मम्मी जी, श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा। भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को गले लगा लिया।

फिर तेरे पास वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी मानसी।

क्योंकि ज्ञान घुसकर अपने कमरे में चले गए। जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना याद नहीं। मन ही मन बहुत दुखी है। उसने दरवाजा खोला। उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सा चाय किया है, सुंदर चिकनों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसलिए आज ऑफिस चले गए हैं। ये सब चाय पी सकते बढ़िया गिफ्ट देखो

बात कमाई कर दिया, मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन वर्ग है। फूलों का गुलदस्ता चमेली की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने

कि मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग चल रही थी और ये मैं समझ नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया और सब टस कर मम्मी से निकल गए। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर का हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारे

लोगों को कहने लगा, शर्मा मेरी साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है? एक बेटी है, एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, इसके दोनों बेटे हैं आपकी। अरे मेरे बेटे भरी नजरों से संदीप को देखा और सब फेंक दिया पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना

0: के पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छुपे हुए शब्दों से प्यार।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ
1: आगे देखो तो रघुपति साहब चिराग रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाजी चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार आप तो मुंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जो है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की पूरी विधा कर शायद इस कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा।

प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से। आइए देखते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं कार्यक्रम छाया।

कि आप दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं, न दिन अपने लगते हैं, न रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बता रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद सब भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम

लीडरशिप और अभिवृद्धि के लिए नाम था अमित और अमित। कार्यक्रम का अभी भी हमने आपके लिए दिया है आनंद बच्ची का दिखावा लखनऊ समुदाय के संगीत पद की आवाजी के लिए आवाजी में सलमा आगर और मोहम्मद अजीज की संक्रमण है पति पत्नी।

sì. Com'è la fonda?

Thank you.

Thank you.

अच्छी तरीके से लौट सकते हैं या शारीरिक तरीकों को अपना कर पूरी तरह से हम जीवन चल सकते हैं। किंतु हम सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास पर सोचा कर सकते हैं। जब आवश्यक न हो

और

from the outside, but

para evitar el ataque. La tierra

आके तुरंत हो जाए।

0: पड़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके घर उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देखूँ कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराज रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है।

ಎಂಬ ರಹೀಂ

Ingrid Gottesman. इसी कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे चंद गजलें। तो पहले समाज कर्मी बेगम अख्तर की आवाज में हामिद लखनवी।

अंतर्गत अभियान सुन रहे हैं चंद्र भ्रष्ट।

क्योंकि जो रसोई में थी कहाँ चली गई। अब मैंने कहा अरे भगवान कहाँ चली गई, देखो सब्जी जलकर खाक हो गई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ सोई है। मेरी तो किस्मत ही छोड़ गई, इस महंगाई में रोज कुछ न कुछ जला कर बर्बाद कर देती है, कभी सब्जी जल रही है तो कभी दाल,

0: जलकर खाक हो गई। कहाँ चली गई?
1: मेरी अच्छी किस्मत कहा कि मैं कहीं चली जाऊँ। दिन रात घर में कोल्हू की जाय की तरह चलती रहती।
0: तुम्हें तो एक अजूबा बेबदबू

0: की भी बातें कर रही है। अपने तो पलंग पर लेटी थी और मैं बाथरूम से निकलकर रसोई में आकर सब्जी उतार लेता। क्यों?
1: आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं पलंग पर सोई रहती हूँ और घर का सारा काम आप ही तो कर देते हैं। ठीक है, मेरी तो किस्मत की फूटी।
0: अरे किस्मत तो मेरी फूटी है श्रीमती जी कि आज फिर मुझे जली सब्जी खानी पड़ेगी। हे भगवान,
1: क्या करें जी, अब और सब्जी तो घर में है नहीं, फिर खुद को बना दूं। आपने खुद ही सब्जी जलाई है तो मैं क्या करूं?
0: हाँ, और सुनो, मैंने ही सब्जी जला दी, पर ये क्यों नहीं कहती

0: ini pakai uang. Akan dulu mana bawa satu bagian. Kalau melihat di bawah satu pasu bagian. Wah, itu pasu ke pertama ni agak apa? Atau tidak ni kita baca?
1: Malah cara duit dengan.
0: Mana pasu kah, bayi?
1: Kamal kah doktor ni?
0: Bini mesti lu kerjasi mati.
1: Sih,
0: jalan tahu mana bawa pasu ni kita baca.
1: बाहर जाकर
0: क्या कहा बड़ा बाबू ने
1: चेक मेरे पास है
0: नहीं तो
1: मेरे पास तो कोई कागज वगैरह नहीं है
0: कल ही मैंने आपसे चेक साइन करके बड़ा बाबू के पास भिजवा दिया था
1: पर सर वे तो कह रहे हैं आपके पास चेक है
0: क्या कहा
1: मैंने कहा ना आपसे
0: मेरे पास नहीं है
1: तो सर वे तो सो रहे हैं दफ्तर में
0: व्हाट
1: क्या कहा
0: दफ्तर में आदमी सो रहे हैं
1: ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे

0: क्वेश्चन करता हूँ
1: जी सर, एक बार मुझे माफ कर दीजिए सर, फिर आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आप हमेशा यही कहते हैं लेकिन दफ्तर में सोने के बाद नहीं आते। दिस इज वेरी बैड बार बाबू।
0: सर मैं सोया नहीं था सर।
1: मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ।
0: नहीं सर, वो तो जरा सी आंख लग गई।
1: ये थे दफ्तर के बड़ा बाबू। आखिर ये बेचारे करे भी तो क्या। छोड़िए साहब, हमें क्या मतलब इससे, ये हेडेक तो उनके बॉस का है। फिर ये तो कुछ भी बात नहीं। अब जो नमूना आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ ये भी कमाल ही है कमाल। अगर इंसान जाग रहा हो तो आंखें लग भी सकती हैं, पर सोए हुए की आंखें खुली रहे और वो चलता भी रहे तो बात कुछ बनती नहीं। पर आप खुद ही देख लीजिए ये सज्जन अपने ही घर में कैसे फंस गए हैं।

उठिए उठिए महावीर, पकड़ो पकड़ो।

धरती और निर्देशित झलकी तभी आप सुन रहे थे। ये झलकी हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र की।

0: कक्षे में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके नायर उनका घर था, जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूँ कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाजी चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा आइए लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे विविध भारती पर। लता मंगेशकर, सुरेश पादुकर, मोहम्मद सईद

उसका कितना बड़ा महत्व है।

की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल

0: 去吧。是他们去发下船。
1: किसी भी वेदर को सुझाव देंगे गुरु मंत्र समझाएगा और गुरु उसको गंभीरता से लेगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं

सुनिए सर लता मंगेशकर और मुकेश जी, गीतकार हसरत जयपुरी जी और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: करता था
1: सही चार सचिव जी
0: बहुत ही बुढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत

सेवेंटी सेवन या जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना

और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी।

पहुंच कर दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग

people come.

भी मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आंका नहीं जा सकता।

कलाकार भी हैं जो सिनेमा को उसके शब्द रूप में समझती और निभाती हैं। वीरो के किरदार में सोनम ने सूजस की कमराओं और भावनाओं को बेहद सादगी उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं

कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस दल को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निराशा, मानवीय संवेदना और बलिदान को ऐसे पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ जर्मन तस्वीर नहीं है बल्कि गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात की प्रशंसा

जरिए जैसे मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपने अभिनय रेंज का एक दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से

के उद्यमी आनंद आहूजा की शिक्षक बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर

गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं से मातृधर्म से जुड़े समूहों मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती है। उन्होंने

के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को बेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए उसकी सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सुनाम भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म मिर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सांवरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्मफेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहाँ तक बात है उसमें भी वे लगातार

फिल्म में अभिनेत्री सोनम कपूर की और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

उतरते हुए पानी में हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदिनी हुलस जाती है,

विचार को तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को भी तो मिलता नहीं जरा सा करार पर

के परिणाम बताए नहीं जाते। ये नखमे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते, इन्हें तनाव मोहब्बत हो और आवाज हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की

बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले